तेरी ये जवानी को मिला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले

भाई तू क्यों रोना है? ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन की केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। जीरान कहते ने कब्रस्तान कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ए भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है

आकार नाना प्रकार। श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं, जोग भोग नहीं भेद जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं। निगम शेखादिक कथिक नेत नेत कर, पूर्ण ब्रह्म गुरु ज्ञान।

संग संग लागे दुख भागे अंग संग अंग संग अंग संग अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे प्राण मन तन सब हरे।

कोई भी रस्मां बांझी ना रहे, क्योंकि गुरु नानक दे करो जे कोई दाता मंगदा है ते दाता मिलदियां ने, दाते वालियां नूं दाता भी मिल जांदा है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा नंद सिंह जी बड़ा कीमती वचन करदे सन, कहिंदे ऐ गुरसिख चात मार, धियां पुत्र मंगे ओह भी मिल गया, धन दौलत मंगिया ओह भी मिल गया, सोहणे कारोबार लई अरदासां कीतियां ओह भी मिल गए। भी ऐ गुरसिखा जे किते तू गुरु नानक मंगिया हुंदा तेनू गुरु नानक भी मिल जाणा सी। आओ भई झोली विछा के

प्रकार की भगती दसी है और सारिया भगतिया विचों उत्तम भगती है कलयुग दे विच। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए त्याना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जागदी जोत जुगो जुग अटल सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं कि भगतिया विचों प्रधान भगती है। जपा सिर जप है, तपा सिर तप है, करमन सिर कर्म है। जो सत संगत विच बह के कीर्तन दी समाधि ला के जपना श्री वाहेगुरु उत्तम भगती है। कीर्तन दी भगती आख्या जिन्हां ने कीर्तन विच समाधि जोड़ ली, मन जोड़ लिया, वो आप ही नहीं तरे, आप तरे सगले कुल तारे। सारियां कुलां उन्हां दियां तर गईयां, हर दरगह पत सों जाएंदा। संसार विच भी उन्हां दी जय जयकार, ते दरगाह विच भी फिर रेरे दरगह कहे ना को। आओ बैठ आदर सब देव, ओ आदरणीय हो गए भाई जिन्हां ने गुरु को नो सिफत।

परम सत्कार योग साध संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करो गीत ध्यान संकोच के शरदा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरणा विच पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी दा कीर्तन गुर इतिहास सरवण कीता। जिन्ना समा होर महाराज बख्शदे ने अज इस पंडाल दा पंजवां समाप्ति दा दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जेड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी किरपा होवे उदों सतगुर पातशाह जी किरपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुज्या नहीं जा सकदा पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इहनूं जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारियो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारियो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया के आखो झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी ये मजबूरी है मनुख दी। समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे वो कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उन्हूं बोलने की लोड़ नहीं होंदी। जेड़े बंदे नूं देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उन्हूं बोल के दसण की लोड़ नहीं। जिन्हूं दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उन्हूं कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलने की लोड़ पई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਖ ਵਰਤੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दीवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गलबात पंजाब विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच दोस्तां विच घर दे नौकरां चाकरां नाल ता समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकंगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिया, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकंगे। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध कीवें जोड़ेंगे, अपना जन्म कीवें सफल कर सकंगे। हो सकता है आप जी ने इस पासे कभी ध्यान ना दिता होवे, असीं ता उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उलटाई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनी वध तो वध जवाना बच्चा नु पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नु कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदो गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेशां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रा नूं भी इस सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

खालसा जियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा 22 नवंबर 1998 दा दिन गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख संगतां वास्ते अत्यंत सुभागा दिन है, जिस दिन अमृत दे दाते सरबंसदानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन चरण कमलों के कौतकों राही पवित्र हुई इस धरती ते गुरु खालसा पंथ के 300 साल साजना दिवस की स्वयमान परी याद में सदीवी बनाने लई खालसा विरासत यादगारी कंपलैक्स की उसारी का आरंभ किया जा रहा है। इस धरती को 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर हजूर ने खरीद के अपनी पूज माता नानकी जी की याद विच चक माता नानकी का नाम दिता। इस धरती का पहला ते संसार का सब तो अदुती कौतक यह होया कि 9 साल की संसारक उम्र के गोविंद राय जी ने अपने पूज पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नू अपने दर ते आए कश्मीरी पंडितों की बेनती ते समुची मानवता ते विशेष करके हिंदुस्तान वासियों की धार्मिक सभ्याचार अते समाजिक आजादी नू बरकरार रखने लई शहादत वास्ते दिल्ली भेजिया। ते इसी दिल्ली तो कुछ अरसे पिछों 9वें पातशाह हजूर दा गुरु प्यारे सिख भाई जेता जी राही केवल सीस ही लिया गया सी। इस पिछों तां लासानी रूहानी कौतकां दी चढ़ी ही लग गई सी। गुरु पिता वल्लों इस तरह संसारी मनुखां नूं अणख गैरत वाली आनंदमई जिंदगी लई अपना सीस कुरबान करन उपरंत गुरु दर तों आनंद प्राप्ति दी रीझ रखण वालियां ने गुरु नूं सीस भेट करन दा अमुक प्रवाह चला दिता। शायद इसे लई इस धरती दा 10वें पातशाह जी ने नाम ही आनंदपुर रख दिता। ओ पुरी जिथे आ के कोई भी अपने सतगुरु दे सन्मुख हो के गुरु दी मत विच जीउंदे आ, गुरु दे तप तेज दा तारनी बन के खालसे दे रूप विच आनंदमय जिंदगी जीउ सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने सन 1699 दी विसाखी ते खंडे बाटे दी पाहुल राही सीस भेट करन वाले 5 गुरसिखां नूं अपने प्यारे कह के अपना सब कुछ अर्पित करदे आ, आप उन्हां अगे सीस निवाउंदे आ, आपे गुरचेला दा लासानी कौतक कीता। फिर हजारां दी गिणती विच अपने दर ते आउण वालियां नूं गुरु खालसा पंथ दा नाम दे के निवाजदिआं होइआं इह वचन उचारे, इन्हीं की कृपा की सजी हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोर परे। इसे गुरु खालसा पंथ दे बोल वाले ते इस पंथ राही सरबत दे भले दी कार्ज लई गुरु पिता ने अपने समेत अपना समुचा परिवार कुरबान कर दिता। गुरु खालसा जी ने भी पिछले 300 साल तो अपने लोक परलोक दे सुख दाते सतगुरु जी दी मेहरां दा पात्र बनन लई किसे ना किसे रूप विच कुरबानियां दा अते सरबत मानवता दे भले लई तत्पर रहण दा इतिहास रचिया है। अज साडे सारियां लई माण दी गल है कि असी अपने गुरुदेव पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी अते पूजनीक माता साहिब कौर जी दियां अनंत बख्शिशां दा अपने बुजुर्गां वांग अधिकारी बनन लई इह 300 साल साजना दिवस मनाउण जा रहे हां। सारे संसार विच फैल चुके गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख इस दे लई बड़े सुचे जहे चाओ नाल कमर कसे कर रहे हन। इस सुभागी अवसर ते गुरु दियां मेहरां नाल नवाजी इस आनंदपुरी विखे एकत्र होईयां अनगिणत गुरसिख रूहां नूं गुरु पातशाह दी महान कीर्तनीए गुरसंगतां दियां असीसां दे पात्र भाई साहिब हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले गुरबाणी दे रस पिन्ने कीर्तन राही गुरु दियां अनंत मेहरां दा अहसास कराउण अते गुरु गोद दा अधिकारी बनाउण दा यतन कर रहे हन। उन्हां ने गुरु पिता दे इस मानव संसार विच पर उपकारी बन के आउण अते अकाल पुरख जी वल्लों बख्शिश होए तप तेज दा तारनी बनाउण वाले गुरबचना दा कीर्तन करना है। मैनूं इस गल दी भी बहुत खुशी है कि टी सीरीज कंपनी दे संचालक श्री गुलशन कुमार अते श्री दर्शन कुमार जी ने इस कीर्तन नूं संसार दे हर कोने तक संचारित करन अते सदीवी यादगार बनाउण लई इस नूं रिकॉर्ड करके संगतां तक पहुंचाउण दा शलाघायोग उपराला कीता है। पिछले काफी अरसे तो यह इस सेवा विच लग के सिख संगतां दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हन। मेरी गुरु पिता दे
इस पावन तख्त श्री केसगढ़ साहिब दा सेवादार होण दे नाते आईयां हुईयां समूह संगतां गुरु के इना महान कीर्तनियां श्री दर्शन कुमार जी अते ओ सारे सज्जन जेड़े इस वड्ड मुल्ले कार्ज नूं माण भरिया इतिहासक कार्ज बनाउण विच रुझे होए हन उन्हां दी चढ़दी कला अते खुशियां भरी जिंदगी लई अरदास है गुरु राखा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तेरे हाल। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही दात मंगदा होवे, नहीं, हर किसी की मंग वखरी है, पर वो एक दाता सब दी चोली दात पा रहे है। एक गल वखरी है, किसी नू जल्दी किसी नू देर ना, पर दात सब नू मिलती है। ए नहीं कोई कह सकता कि दात मैनू नहीं मिली, हर कोई दात प्राप्त कर रहे है, क्योंकि साडे गुरु ने सानू इको गल समझाई है कि दात लैण तू पहले एक काम कर, गुरा एक दे बुझाई। ए गल दसी है, सबना जिया का एक दाता, सारे जीवां दा दाता इको ही है, पर शर्त की है, सो मैं विसरना जाए, बस तू उन्हू विसारना, उन्हू भुलना, उन्हू हमेशा याद रख, दात जेड़ी मंगेगा वो मिल जाएगी। हुण साहिब कहिंदे ने, हे मेरे मालिक वाहेगुरु अकाल पुरख, मैं सारे जगत नू फिर के वेखे, हर पासे झात मार के वेखे, तेरे वर्गा कोई दाता नजर नहीं आया। तू एक ऐसा दाता है जिस को हर कोई दात आके मंग रहे है। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता, मैनू इको ही दाता नजर आया है।

एक है दाता अनेक है। दाता और दाता विच बहुता फर्क नहीं। दद्दे नू कन्ना तत्ते नू कन्ना दाता, दद्दे नू कन्ना ते तत्ते नू कन्ना उत्ते टिप्पी पै जाए बन जांदे दाता। हुण गल सी दातार नाल जुड़त दी, जुड़ गए दाता दी नाल। साहब कहिंदे दात हर तेनू मिलेगी पर दातार नू याद करके। दाते दात रखी हाथ अपने जिस भावे तिस दी, क्योंकि सब दाता उस मालिक दे हाथ विच ने जो भावे दे देवे। भाई साहब जी दा एक बचन बड़ा कीमती है, आप दी झोली पावा, क्योंकि सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने सब दाता ही